0: यो PFBS गोरखा रेडियो हो।
1: आज माले छो छो छो छो छो। ओहो गोरखु के घरे ओहो। वो पार ले परेवड़ा भाई लाठी हो रही। क्यों पार थी मम्मी?
2: खाड़ा कौन खाड़ा ले उड़ा पूरा। कुछ पैसे